होवच सच्यार कुड़ियार, होवच पाप पुन विचार, होवच नरक स्वर्ग अवतार, होवच हसै होवच रोवै, होवच परिय होवच तोवै।

जुग जुग फेर वडाई ज्ञान बुझता है सत जुग रथ संतोख का धर्म गैरथ बाहू।

जगत कसाई नील वस्त्र पैर होवे प्रमाण मलेशता लै पूजा पुराण अपाग्या का कुठा बकरा खाना चौंके उपर किसे जाना चौंके उपर किसे ना जाना देखा चौंका कड़ी कार ऊपर आए बैठे कुड़े यार मत पिटे मत पिटे एहो आना साडा फिटे तन फिटे फेर करेन मन जूठे कौ नानक सच त्याई है।

गुर के चरण तोहे तोहे पीवा कागा क्रंग टंढोल सगला खाया मास हे दिन न मत सुहो

एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वधाइया राग रतन परवार परियां शब्द गावन वाइया शब्दों ता गावो हरि के रामन जिनी वसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया हे मन मेरे आ तुम सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसार ना अंगीकारु करे तेरा कार्य सब सवार ना सब नगला समरथ स्वामी सोख मनो विसारि कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही कर तेरे करता तेरे सब किस वैस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सचे साहिब क्या नाही कर तेरे साचा नाम मेरा अंधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मनवाई वसिया जिन इसा सब पुजाइया सदा कुर्बान किता गुरु भेटो इस दिया वडियाईया कह नानक सुनो संतो शब्द तरो पे आरो साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच सब तित कर सुपाग्य कर सुपाग्य शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत वस कीते काल कंठ कुमारे या तुर करम पाया तु जिनको से नाम हर कह लागे कह नानक तै सुखुआ तित कर अनहद वाज आनंद सुनो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभु पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी संत साजन पए सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहतूर सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नान गुर चरण लागे वाजे अनहतूरे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह तू ठाकुर तुमरी गत मित तुम ही नानक दास बोलो जी वाहि गुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती समरकै गुरु नानक लई ते आए

कोई माटी का क्या तुपै स्वामी मानस की गत ही सत नाम श्री वाहिगुरु साहिब जी तनासरी महला तीजा काचा तन संच है मूर्ख गावार मन मुख पुले अंद गावार विखया कै तन सदा दुख होए ना साथ जाए ना प्राप्त होए काचा तन संचय मूर्ख गावार मन मुख पुले अंद गावार बेखिया कै तन सदा दुख होए ना साथ जाए ना प्राप्त होए साचा तन गुरमति पाए काचा तन फुनिया बै जाए रहाऊ।

वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

जो इतनी कि सेवा प्रवान करनी। असी धनवाद करते हाँ धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी का, जिन्होंने कि दस जथे ते तरस करके कीर्तन की सेवा ली है। धनवाद है आप सात संगत का जिन्होंने साढ़े नाल कीर्तन की हाजिरी भरी है। धनवाद करते हाँ गुरद्वारा साहब के प्रधान जी सरदार प्रितपाल सिंह जी का, जिन्होंने कि सानू इत्थे कीर्तन की सेवा दे के दासा नू निवाजिया है। धनवाद करते हैं डिंपल वीर जी का भी इस तरह सेवा लेंदे रहेंगे। सो हुई भुला चुका दी खेमा, फगज के फतेह की सांझ बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा।

0: कै सिमरन गर्व ना बसे प्रभ कै सिमरन दुख जम नसे
1: प्रभ कै सिमरन काल पर हरे प्रभ कै सिमरन दुश्मन तरे
0: प्रभ सिमरत गज

0: नाम की माहे उदार
1: अनक बुने चन करतनी तरे हर को नाम कोट पर हरे
0: नाम जपू मन मेरे नानक पाओ सुख घने
1: अगल शिष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जपत होए सुखिया
0: करोरी बंदना परे हर का नाम जपत निस्तर
1: अनक माया रंग तिख न बजावे हर का नाम जपते गावे
0: मार्गे जात के लाते हर नाम संग हो सुहे
1: ऐसा नाम सत यही नानक गुरमुख प्रमगत पाइये
0: तत नहीं कोट लख बाही नाम जपत ते पार पराई
1: अनक बिगंजे आए संघारे हर का नाम तत्काल उधारे
0: जोन जन में मर जाम नाम जपत पावे बिसरा
1: ओम मैला मलकमून होवे हर का नाम कोट पाप खोवे
0: नाम जपू मन रंग नानक पाया साध कै

0: सोच करे एक दिन सर रात मन की मैल न तनते जात
1: साधना करे मनते कबु न बिखिया
0: जल तो है बोधे अनीस का है कच्ची पीता
1: नाम की महिमा ऊंचे नानक नाम उधरे पति

0: भजन बिन बिरथे सब काम जो किरपन के निरारथ
1: दान। तन तन ते झंझट बस्यो हर नाव नान तक बल बल जाओ।
0: रहत अवर कच अवर कमावत मन नहीं प्रीत मुख हूँ गंड।
1: जानन हर प्रभु प्रवीण बार भिख न कहूँ पीना।
0: उपदेश आप न करे आवत जावत जन्म मरे।
1: इसके अंतर बसे निरंकार

0: ये प्रसाद कुंतन तन लावे तिसको सुमरत प्रमुगत पावे।
1: प्रसाद बसे सुख मंदिर तिसे ध्याय सदा मने।
0: ये प्रसाद गा संग सुख बसना अट पैर सुमरो तिस रसना।
1: प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा ध्याय ध्यान।
0: ये प्रसाद पाठ ब्रह्म हंडावे तिसे

0: जी प्रसाद हस्त कर चले जे प्रसाद पूर्ण फलाय
1: प्रसाद परम गत पावे जे प्रसाद सुख सह
0: समाए ऐसा प्रत्याग

0: गुरु प्रसाद विख्या प्रहरे मन की बासना मन तिट रहे
1: इंद्री जित पन दोख ते रहत नानक कोट मदे को ऐसा
0: वैष्णो सोज सुपर सो प्रसन्न बिसम की माया ते होए भिन्न
1: करम करद होवे न करम तिस वैष्णो का निर्मल धाम
0: ओम फल की इच्छा निम बाचे केवल भगत की।

0: ज्योतिष भावे सोई करावे।
1: इसके हाथ होए तां सब चले जो सुभावे सोई करे।
0: जानत बिखिया मैं रचै जे जानत अपन आप बचै।
1: परमे फूला दंस ता भी निमकमाई चार कुंड फिर आवे।

0: नन्नारु जो सवंग गीत खावे जो प्रभावे तवे नचावे
1: ज्योतिष भावे सो होए नानक दूजा अवर न कोई
0: कौन सा संगते पावे सुस्थान ते बोर न आवे
1: अंतर होए ज्ञान परगा।

0: लको उड़धावे त्रिपत्नावे माया पाछे पावे
1: अनक पहुग बिखिया के करे न तवतावे खप खमरे
0: संतोख नहीं को राजे सुपन मनोरथ बिरते सब
1: नाम रंग सर्व सुख होए बट पग्गी किसे परापत होए
0: करामन आपे आव सदा सदा नानक हर जा
1: कर्ण करामन करने हर इसके हाथ काम बीचा
0: करे तैसा होए आपे आप आप

0: संत के दुखन यार जा कटे, संत के दुखन जमते नहीं छुटे।
1: संत के दुखन सुख सब जाए, संत के दुखन नरक में पाए।
0: संत के दुखन मत होए मणि, संत के दुखन शोभाते ही।
1: संत के हते को रखे न कोए, संत के दुखन थान भ्रष्ट होए।
0: संत कृपाल कृपा जे करे, नाना संत संग निंदक पीतरे।
1: संत के दुखन ते मुख भवे, संतन के दुखन काग जो लवे।
0: संतन के दुखन सर्प जौन पाए, संत के दुखन तक जौन किरमाए।
1: संतन के दुखन तृष्णा में जले, संत के दुखन सबको छले।
0: संत के दुखन ते सब

0: संत के दोखी की जड़ किछ नाही अपन बीजा पे ही खाएं।
1: संत के दोखी को अवर न रखन हार नाना संत पावे ताले ओ बार।
0: संत का दोखी ओ मिलाए जो जल बिहून मछली तड़फड़ाए।
1: संत का दोखी भूखा नीरा

0: प्रभ सोए नानक बिघन न लाग गए कोई।
1: उस मन में कर्णकार कर मन मेरे सत व्यवहार।
0: निर्मल रस नाम रत पियो सदा सुहेला कर ले जियो।
1: नैनो पिक ठाकुर कारंग सा संग बिनसे सब संग।
0: चरण चलो मार्ग गोविंद मिटे पाप जपिए हर बिंद।
1: कर हर कर्म

0: नाम के धारे सुनन ज्ञान ध्यान,
1: नाम के तारे आकाश पाताल, नाम के तारे सगले आकार,
0: नाम के धारे पुरिया सब भवन, नाम के संग उतरे सुन श्रवण,
1: कर कृपा जिसे अपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सोजन गद पाए,
0: सत जाका सत स्थान, पुरख सत केवल प्रधान,
1: कर तू सत सजा की बाणी, सत पुर समय समाणी,
0: सत कर्म जाकी रचना, सत मूल सत सत उत्पत,
1: सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बजाए।

0: सहज संता
1: जन हार को सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए
0: सत स्वरूप दे जिन मान्या करण करामण तुन मूल पछान्या
1: हरि विश्वास प्रभ आया तत ज्ञान किस मन प्रगटाया
0: जिन बहुए बसन्ना जस्य बजा समय समन्ना।

0: सेवा दिन रात प्रभ अपने जन की निदान
1: करे प्रयत्न के चाय प्रभ अपने सोरे समान
0: जो होवा होवत सो जाने प्रभ अपने का हुकम पहचाने
1: तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कह के न जानो
0: पहर प्रभ बसे हजूरे को नानक।

0: संत जना मिलकर हो विचार, एक सिमर नाम आधार, कर्ण कांसो प्रभ समरथ, दीर्घ गौ नाम हरवत्थ,
1: संचो गो भगवंत संत जना।

0: का हो वतनाश नानक नाम जपो
1: गुंतार
0: सुख होए मन बिकसे साध चरण धोए
1: भगजना के मंत्र रंग बिला को पावे संग
0: वस्त दी जय कर मया गुर प्रसाद नाम जप ले
1: माँ कहीं न जाए नानक रया सर्व समाय
0: रब बख्शन दीन दयाल भगत।

0: अपना श्री सुख अपन आसन ते जन मरण को कहा बिना
1: जब पूर्ण करता प्रसोए तब जम की तास कहो किस होए
0: अभिगत अगोचर प्रभ एका तब चितर गुबर किस पूछत
1: नहीं।

0: ये सर्वकलायाप्ये परमिन्तबे देव कहाँ को चीना
1: अपन आप उद्धार है तो सगन सगन कहाँ बिचारा
0: ये अपन अपने आवने रात कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा
1: मन विषम रहे विषम।

0: जना सुन है शुभ वचन सर्वव्यापी राम संग्रह
1: जिन जात किए राय सत वचन साधु सब कहत
0: सुख माने करन करावन हार प्रभु
1: अंतर बसे बार पी होई नानक दर्शन देख सम्मोही
0: आप सत किया सब सत तिस प्रभु ते सगली उत्पत्ति

का सदका सर्व सुख होए। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रच्छे आर्यत देग तेग फतेह।

अहन सो सहज सुभाए दर्शन परसिए गुरु के जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटिए उदठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दे कटिए सजन सचा पातशाह सिर शाह दे शाहो जिस पास

हर त्यावें तुद जी से जन जोग में सुख वासी से मुक्त पए जिन हर त्याया जी तिन तूटी जमकी फासी जिन निरपो जिन हर निरपो त्याया जी तिनका पौ सब गवासी जिन

हाओ ना हो जति सती ने पड़या मूर्ख मुगदा जन पया परणवत नानक तिन की शरणा जिन तू ना ही विसरिया आसा महला पंजवा पई परा पदमानुख दे हुरिया गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया अवर काज तेरे कितै ना काम मिल साध संगत पज केवल नाम सरंग जामला पव जल तरण कै जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाओ जप तप

शर्मा पातशाही दसवीं कब्यो बाच बेनती चौपई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मरे मारा अपना जान करो प्रतपारा हमरी दुष्ट सबैत मुका।

जय प्यासा तुम्हें शाड कोई अवर न त्याऊं, जो बर चौ सो तुम तै पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सतरा मा

तमाशा जमन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जो थियो जमन काल सब लोक सवारा नमस्कार है तय मारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैत जक्षण उपजायो आदि अंते कै अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार सही को मारी सकल बजाज ने आप सवारी सेवकन को सेव गुण सुख दियो।

पट की जाने, जब उदकर करा कर तारा, प्रजा तरत तब दे पारा, जब या करक कर तो कब हूँ, तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ, जे ते बदन श्रेष्ठ सब तारे, आप अपनी बूझ उचारे, तुम सब ते रहत निरालमा, जानत भेद भेद अर आलमा, निरंकार निर्विकार निर्लंब, आदि अनिल अनादि असंभ, ताँ का मूड उचारत बेदा, जां को भेव न पावत बेदा, ताँ को करपान अनुमानत, महामूड कछ भेद न जानत, महादेव को कहत सदाशिव, निरंकार का चीनत न भेव, आप अपनी बुद जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तेती, तुमरा लखा ना जाए पसारा, के बेद सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा,

कैठा सगरी शिष दिखाए चंभव आद जुगाद स्वरूप संभव अब रक्षा मेरी तुम करो सेखो बार सिख संगरो दुष्ट जते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रणकाता जेस तो तव शरणी परे तिनके दुष दूत मरे पुरख जमन पग परे त्यारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्याय है ताके काल निकट न है रक्षा होए ताए सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला फिर पाद स्तन जाए ने हरे हो ताके ताप तन कमो हरे हो रे दुषेद कर्मो सब होई दुष्ट शाह स्वसके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा गाल फास्ते तहे उबारा।

पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सकल वे सूरे दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी संत साजन पे।

सुमगरी तुमर सूत्र तारी तुम ते हो सुआज्ञा तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दा सदा कुर्बानी। बोलो जी वाहे गुरु, एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सुहाए, वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं।

अहर्ण सु सहज सुबाए दर्शन परसिय गुरु के जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खसम दी नूरे अरसों कुरसों चटिए तो दिठे।

सिद साधिक तरसै सब लोए पूरे भाग प्राप्त होए सब किछ साचा साचा है सोए उत्तम ब्रह्म पछाण कोए सच साचा।

काचा ताना संच है मूर्ख गवार, मन मुख पुले अंध गवार, बिखिया कै तन सदा दुख होए, ना साथ जाए ना प्राप्त होए।

0: हन।
1: श्लोक महला पहला। सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मंड सच्चे तेरे लो सच्चे आका सच्चे तेरे करने सर विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा देवा सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तू दाखे लख करोड़ सच्चे सब तान सच्चे सब जो सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच त्यान सच जो मर्ज मैं सो कच निकच महला पहला।
0: वड्डी वड़ाई जा वड्डा ना वड्डी वड़ाई जा सचनिया वड्डी वड़ियाई जन चलथाओ वड्डी वड़ियाई जाने आला।

0: विस्माद रूप विस्मादरं विस्माद न कै फिर जन विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडाणी विस्माद तरते विस्माद खाने विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संयोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद पोग विस्माद सिफत विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद राह विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर वेख विडान रहया विस्माद नानक बुजन पूरे पाक महला पहला
1: कुरत सै कुरत सुनिए कुरत भाव सुखसार कुरत पतलिय कशे कुरत सर्वे अकार

0: जी की फतेह।
1: अगम अनंत अनाद आद जिस कोई न जाने, शिव बिरंच तर ध्यान नित है जिस बेद बखाने, निरंकार निर्वैर अवर नहीं दूसर कोई, पंजन गड़न समाथ तरण तारण प्रभ सोई, नाना प्रकार जिन जग कियो जन मथुरा रस नारस, श्री सत नाम करता पुरख गुरु रामदास चित है बसे, गुरु समरथ गह करिया त्रुबुद्ध सुमत समारण को, फुन त्रम तुजा फहरंत सदा अग पुंज तरंग निवारण को, मथुरा जन जान कही जी साथ सो और कछु न विचारण को, हर नाम बहित बड़ो कल में पव सागर पार उतारन को, संतत ही सत संगत संग सो रंग रतेजस गावत है, त्रम पंथ तरयो तरनी तर आप रहे लिवतार नतावत है, मथुरा पन पाग पले उनके मन इच्छत ही फल पावत है, रव के सुत को तिन त्रास कहा जो चरण गुरु चितलावत है, निर्मल नाम सुदा पर पूरन शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर, गहर गंभीर अथा अत बड़ सो पर सदा सब बिदरत नागर, संत मराल करे कंतूहल तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर, कल युग दुर्त दूर कर बेको दर्शन गुरु सगल सुख सागर, कल युग दुर्त दूर कर बेको दर्शन गुरु सगल सुख सागर।

ज्ञान अंतर्गत तेज पुंज तह लोक परगासे, देखत दर्श पटक प्रम पजत, दुख पर हर सुख सहज बिगासे। सेवक सेवक सेवक सदा सेवक सिख सदा अत लुभत, अल समूह ज्यों कुसुम सुबासे, विद्या मां।

0: मोहित अमृत नाम दियो समरथ, फुन कीरत वंत सदा सुख संपत, रिद अर सिदना छोड़ै साथ, दान बडो अतवंत महाबल, सेवक दास कयो एह तथ, ताहे कहां परवा कहूं की, जाके बसीस तरयो गुर हाथ।
1: तीन पवन पर पूर रहो सोई, अपन सरस कियो ना जगत कोई, अपने आप ही उपायो, सुर नर असुर अंत नहीं पायो, पायो नहीं अंत सुरे असुरे नर, गण गंधर्व खोजंत फिरे, अविनाशी अचल अजोनी संभो, पुरखोत्तम अपार परे, कर्ण कारण समर्थ सदा सोई, सर्व जी मन त्यायो, श्री गुरु रामदास जयो जय जग में, तैं हर परम पद पायो। सतगुर नानक भगत करी इक मन, तन मन धन गोबिंद दियो, अंगद अनंत मूर्त ने जितारी, अगम ज्ञान रस रस्यो हियो, गुर अमरदास।

0: तिनको अवतार भयो कल भिंतर जस जगत्र पर छायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग में तै हर परम पद पायो मनसा कर सिमरंत तुझै नर काम क्रोध मिट्यो जो तिण बाचा कर सिमरंत तुझै तिन दुख दरिद्र मिट्यो जो खिण कर्म कर तो दर्स परस पारस सर बल पट जस गायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग में तै हर परम पद पायो श्री गुरु रामदास जयो जय जग में तै हर परम पद पायो
1: जे सतगुरु सिमरंत नैन के तिमर मटे खिन जे सतगुरु सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन जे सतगुरु सिमरंत जी की तपत मिटावै जे सतगुरु सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन जे सतगुरु सिमरंत जी की तपत मिटावै जे सतगुरु सिमरंत सिद्ध नाम निध पावै सोई रामदास गुरु बल पन मिल संगत धन धन करो जे सतगुरु लग प्रभ पाइए सो सतगुरु सिमरो नरो जिन शब्द कमाए परम पद पायो सेवा करत ना छोड्यो पास ताते गोहर ज्ञान प्रगट जियारो दुख दरिद्र अंधियार को नास कव कीरत जो संत चरण मुड लागे तिन काम करो जम को नीतरास जिव अंगत अंग संग नानक गुर तिव गुर अमरदास कै गुरु रामदास जिन सतगुरु से पदार्थ पायो निसबासु हर चरण निवास ताते संगत सगन पायमो मन है तुम लियागर पगट सुबास ध्रुप है लात कबीर तलोचन नाम लैत उपजो जो परगास जे पिखत आत होए रस मन सोई संसहार गुरु रामदास।

जिस पास बैठिया सोही सबनांदा विसाहो सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। तनासरी महला पहला घर दूजा अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब कमाल, साहिब जमाल, साहिब बरकत, सर्व सांझी वालता दे रहब, चवर और तख्त दे मालक, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जियां दे पावन और पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब जिया दे अमृत वेले दे दर्शन कर रहे हाँ, अमृत वेले दी हाजरियाँ लगवा रहे हाँ। जो सतगुरां ने सानू पावन हुक्म की दात बख्शी है, सो पावन हुक्म तनासरी राग दे अंदर पहले पातशाह धन धन श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जिया का शब्द है। जो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जिया के अंदर 685 अते 686 अंग के उपर सवायमान है। सो पातशाह जी पावन हुक्म दे राही किहड़ियां नदरे नायतां दे नाल सानू निवाजना करदे ने। आओ प्रेम सतकार वैराग दे विच भिज के सरवण करना करिए जी। तनासरी महला पहला, घर दूजा अष्टपदियां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गुर सागर रतनी भर पूरे, अमृत संत चुग है नहीं दूरे, हर रस चोग चुग है प्रभ पावै,